0: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियां, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट asianfuneralcare.com।
1: जॉय लुकास पेश कर देने गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे मेकिंग चार्जेस ते एक्सक्लूसिव 35% डिस्काउंट नाले ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करन उते पाओ 0% डिडक्शन ते खास साडे एनएचएस नर्सेस लई जो अपने हाथा नाल इलाज कर देने ते दिल नाल परवा कर देने। जॉय लुकास पेश करदा है मेकिंग चार्जेस ते 40% दी छूट। बस खरीदारी दे समय अपना वैलिड आईडी दिखाओ। ए ऑफर सिर्फ 7 जून तक वैलिड है।
2: Joya Lucas, world's favorite jeweler.

साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: It's the most wonderful time.
3: Booking Heroes. On the Beach does way more than beach holidays. We now offer millions of combinations of beach holidays, city breaks and cruises. So whether you fancy swimming, sightseeing or sitting on the top deck of a ship, we've got you covered. So stop booking around and whatever your next holiday looks like, get searching at onthebeach.co.uk.
4: Upturn Atoll Protected.
5: On the Beach.
6: दिन में बबलू रात में लल्ली ये कलाकार बन गया है सबका काल बाप की मौत का बदला लेने आ गया है बबलू देखिए सतरंगी बदले का खेल स्ट्रीमिंग नाउ ऑन हिंदी Z5
7: शबनम साही ऑन सनराइज विद इंडियाज बेस्ट डांसर ऑन सोनी टीवी द स्टेज इज सेट द डांसर्स आर रेडी जॉइन करिश्मा कपूर इन द न्यू सीजन ऑफ इंडियाज बेस्ट डांसर स्टार्ट्स दिस सैटरडे 9:30 PM ओनली ऑन सोनी टीवी
8: This is Sunrise, the UK's biggest.

0: Here on Sunrise Radio with me, Shabnam Sahi, it gives me great pleasure to say a warm welcome to Shri Anil Khedkar, the trustee of Shri Vitthal Rukmini Temple here in the UK. Anil ji, welcome to Sunrise.
1: Namaste, Ram Krishna.
0: What inspired you to set up this beautiful temple outside of India, here in the UK?
1: So first of all, you might know about Vitthal Rukmini. So it is one of the beloved god in Maharashtra and southern part of India. There is a quite long history, around 700-800 year history of Warkari Sampraday who are walking towards Pandharpur. And to bring that glory outside of UK, I was personally walking from Pune to Pandharpur for last 7 years. So in Ashad Mahina, people walk from their respective places towards Pandharpur to take the blessing of Vitthal Bhagwan. So I thought, why not bring this culture across the seas in the UK, which is our Karma Bhumi. So that is the thought came while walking towards Pandharpur. So that is like an inspiring thing. Bring that glory, bring that history and blessings of Vitthal Rukmini to UK.
0: Now, you know, in our conversation off air, Anil ji, you were also mentioning a journey, a very special sacred journey that devotees often make, the Vari journey. Iske baare mein kuch bataiye.
1: Ji haan, bahut hi interesting journey hai. Bahut sare logo ko pata nahi hua ki Maharashtra mein 750 saal purani ek historical journey hoti hai har saal, jahan pe lakhon mein log पैदल जाते हैं पंडरपुर आषाढ़ महीने में, जो जनरली जून जुलाई में आता है. तो ये जो वारी की संकल्पना है, लोग अपना जो लग्जरी ऑफ लाइफ है वो छोड़ के पैदल जाते हैं पंडरपुर विठल भगवान से मिलने. तो यही थॉट आया कि क्यों ना हम जब मंदिर बना रहे हैं आउट ऑफ इंडिया इन यूके, क्या हम वो हिस्ट्री को मिमिक कर सकते हैं. तो वो थॉट को आगे बढ़ाने के लिए लास्ट ईयर, पैदल तो हम लोग इंडिया से यूके नहीं आ सकते, तो हमने प्लान किया क्यों ना हम भगवान विठल के पादुका है, जो चरण या खटावा बोलते हैं, वो लेके आए यूके. सो लास्ट ईयर 14th ऑफ अप्रैल 2025 को हमने जर्नी स्टार्ट किया पंडरपुर, जो महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है. वहां से हमने ड्राइव किया 22 कंट्रीज 70 डेज एंड मोर देन 18,000 किलोमीटर. सो बेसिकली हम लोग एशिया एंड यूरोप ड्राइव करते हुए यूके आए ऑन 22nd ऑफ जून टू connect all the devotees across the globe and to establish those padukas in Mandir.
0: I know that there's a very special event that's coming up. I also want you to tell us about Vadya Mahotsav. This is on Saturday, the 6th of June at the Royal Windsor Racecourse. What can the audience expect at this event, those who make their way to Royal Windsor Racecourse for this Vadya Mahotsav?
1: Definitely. This is like a kind of a fundraising event for Vitthal Rukmini Temple. And there is another important day on 6th, the Maratha Emperor छत्रपति शिवाजी महाराज कोरोनेशन डे, कॉल्ड एज राज्याभिषेक. 6th जून इज अ कोरोनेशन डे फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज. दैट डे वी आर सेलिब्रेटिंग ढोल ताशा. यू माइट हैव हर्ड, आपने देखा होगा कि म्यूजिक में, टीवी सीरियल्स में, या पर्टिकुलरली मुंबई पुणे में
0: बिल्कुल
1: गणपति फेस्टिवल होता है, ढोल ताशा का एक ऐसा जोरदार जल्लोष रहता है. तो वही जल्लोष हम लोग 6th ऑफ जून एट रॉयल विंडसर रेसकोर्स पे करने जा रहे हैं. यूके के अक्रॉस कम से कम 13 से 14 ढोल ताशा पथक है. एट ए टाइम 200 लोग, 100 से ज्यादा ढोल, 50 से ज्यादा ताशे इन वन गो दे आर गोइंग टू परफॉर्म एट विंडसर रेसकोर्स. तो आप सोचिए कि 100 ढोलों का जो आवाज है इतना बड़ा गूंजेगा कि पहली बार यूके की धरती पे आपको जो हमारा इंडियन हेरिटेज है, इंडियन कल्चर है, उसका जो सुगंध है आपको यहाँ पे महसूस होगा.
0: हाउ डू पीपल बुक देयर टिकट्स टू दिस इवेंट?
1: इट इज अ स्मॉल टिकेटेड इवेंट. ऑल द फंड रेजिंग गोइंग टू द टेम्पल. सो बेसिकली यू कैन गो ऑन टेम्पल वेबसाइट svrtuk.org. ये वेबसाइट पे जाके आप टिकट बुक कर सकते हो. स्मॉल अमाउंट है, लेकिन यहाँ पे आपको कल्चरल बोनंजा मिलेगा. वहाँ पे विठ्ठल रुक्मिणी जी की पादुका है जो आपको दर्शन के लिए मिलेगी. एंड सबसे ऊपर आपको खाद्य संस्कृति, महाराष्ट्र के या फिर भारत के अलग अलग राज्यों की खाद्य संस्कृति वहाँ पे आपको एंजॉय करने के लिए मिलेगी.
0: दिस इज अ स्मॉल वे ऑफ स्टेइंग कनेक्टेड टू आवर रूट्स, आवर हेरिटेज, आवर कल्चर, आवर फेथ. व्हाट अ ब्यूटीफुल इवेंट इट साउंड्स लाइक. आई एम इन कन्वर्सेशन विद मिस्टर अनिल खेडकर, हु इज द ट्रस्टी ऑफ श्री विठ्ठल रुक्मिणी Temple UK, SVRT UK. Anil ji, chalte chalte mera aakhri sawal, what would you say to people who wish to find out more about this temple and find out more about other events they can come and enjoy in the future? Where would you direct them?
1: Definitely. So connect with all our social media handles, Shri Vitthal Rukmini Temple UK, our website, Instagram, Facebook, all our social handles are active with ongoing activities. There is a big event, as you mentioned, on 6th of June, Vadyamotsav. On 25th of July, there is a big Ekadashi called Ashadi Ekadashi. Also, there are people going to walk from Manchester to our Ashadi Ekadashi function location. It's like a virtual wari they are going to do across UK. That is happening in June. And throughout the year, we have multiple functions. So we encourage Sunrise listeners to join our social media channels, our WhatsApp group for future events.
0: Thank you so much, Anilji. I wish you the very best for Vadya Mahotsav. Thank you so much for your time.
1: Thank you very much, Ramakrishnari. Sunrise Radio.
0: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk. A sweet reminder that tickets are now live for Vadya Mahotsav, which is this Saturday, the 6th of June, at Royal Windsor Racecourse, SL4 5JJ. Head over to svrtuk.org. That's svrtuk.org for your tickets. Yeah.

0: available at all Quality Foods outlets and other leading ethnic outlets across the UK. This weekend only at Umbala. Visit your local Umbala store on Saturday 6th or Sunday 7th June and get a free rasmalai when you spend over £20. Perfect for gifting, family get-togethers or treating yourself to your Umbala favourites. Simply quote free rasmalai in-store to redeem. That's a free rasmalai with every £20 spent this Saturday and Sunday only. Find your nearest store at umbala.co.uk. One item per customer per transaction. While stocks last, terms and conditions apply.
1: Din mein bablu, raat mein lalli. Ye kalakar ban gaya hai sabka kaaj. Baap ki maut ka badla lene aa gaya hai bablu. देखिए सतरंगी बदले का खेल स्ट्रीमिंग नाउ ऑन हिंदी Z5।
2: शबनम साही ऑन सनराइज विद इंडियाज बेस्ट डांसर ऑन सोनी टीवी। द स्टेज इज सेट, द डांसर्स आर रेडी। जॉइन करिश्मा कपूर इन द न्यू सीजन ऑफ इंडियाज बेस्ट डांसर। स्टार्ट्स दिस सैटरडे 9:30 PM ओनली ऑन सोनी टीवी।
3: दिस इज सनराइज, द यूकेज़ बिगेस्ट।

0: celebrating 36 years of excellence. Sunrise and Music. This is Sunrise with the latest news headlines. Next.
1: Sunrise Radio. Shabnam Sahi on Sunrise with India's Best Dancer on Sony TV. Backed by popular demand, the stage is set. The dancers are ready. Your favorite dancing show, India's Best Dancer, is back. Starts this Saturday, 9:30 p.m. on Sony TV.
2: जिस घुंघरू ने बाप की जान ली, वही घुंघरू अब बेटे का हथियार बनेगा। सिंह और पांडे परिवार की पुरानी दुश्मनी का फायदा उठाकर बेटा बदला लेगा। बबलू महतो काल बनकर आ गया है। दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए सतरंगी बदले का खेल सिर्फ हिंदी Z5 पर।

0: 1981 की फिल्म कुदरत का ये गाना किशोर कुमार की आवाज में, हमें तुमसे प्यार कितना। इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज मंडे की सुबह शबनम साही के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल मैसेजेस। 07925-700-272 द नंबर फॉर योर व्हाट्सएप मैसेजेस, नॉट द नंबर फॉर आवर कॉम्पिटिशन।
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
2: बहुत हुआ सेटबैक, अब होगा मेरा कमबैक।
3: A dream waiting to be revived. Watch Dr. RMB Monday to Friday 7 PM only on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk.
0: Right, I want to hear from you. I want your review because nothing else matters to me. If you've seen Chand Mera Dil, was it any good or is it Dharma production dishing up same old, yet another Nepo story? देखी क्या आपने चांद मेरा दिल? बताइएगा जरूर। Right now, Fahim Abdullah.

0: celebrating 36 years of excellence. Sunrise and music. This is Sunrise with the latest news headlines. Next.
1: Sunrise Radio. Kavita on Sunrise with India's best dancer on Sony TV. Backed by popular demand, the stage is set. The dancers are ready. Your favorite dancing show, India's Best Dancer, is back. Starts this Saturday, 9:30 p.m. on Sony TV.
2: 10 days South Africa every month from November to March. Book before the end of this month and get 200 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
3: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
4: तो वसीम ज्वेलर्स आए
3: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
4: तो वसीम ज्वेलर्स आए
3: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
4: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
2: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना सदा सोना
4: वसीम ज्वेलर्स। जरा हॉली

0: This one from the film Mohabbatein. Which there's a reason why I'm laughing, and later on in the show you're going to get to know why I'm laughing at this. Anyway, you take your pick. This is your option B. Which one would you like? And keep your answers coming in as well.
1: Drive on Sunrise with Pepe's Piri Piri, Pepe's fresh flame grilled chicken, which is specifically marinated in a choice of 6 flavors. Which one would you choose?
2: ZTV HD पर देखिए गंगा माई की बेटियाँ।
3: शांतनु जी, हम तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए।
2: जो कभी दिल से जुड़े थे, आज मजबूरियों ने उन्हें दूर कर दिया है।
3: समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सिद्धू।
2: क्या सिद्धू और स्नेहा फिर मिल पाएंगे?
4: स्नेहा जी और हमें कोई रंग नहीं कर सकता।
2: देखिए गंगा माई की बेटियाँ रोज शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
5: Discover Abu Dhabi with Southall Travel. Experience world-class theme parks, relax on Saadiyat Island's beaches and explore the Louvre Abu Dhabi. From thrilling activities to stunning sunsets, Abu Dhabi has it all. Start planning your dream vacation today. Call 0208 574 8410. Southall Travel, at all protected.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: दिन में बबलू, रात में लल्ली, ये कलाकार बन गया है सबका काल। बाप की मौत का बदला लेने आ गया है बबलू। देखिए सतरंगी बदले का खेल, स्ट्रीमिंग नाउ ऑन हिंदी Z5.
3: एडवर्टाइज ऑन द UK's नंबर वन कमर्शियल एशियन रेडियो स्टेशन। कॉल द सनराइज रेडियो सेल्स टीम टुडे ऑन 020-8574-7777. Drive on Sunrise with Pepe's Piri Piri. Fancy trying something new and sweet? Pepe's is launching for a limited time a new range of desserts. Try them and get 50% off. Vote for your favorite to win a special Pepe's prize. This is Sunrise, the UK's biggest. Mix.

0: journalism dead in India? Doesn't seem so.
1: चल क्या रहा है आपके सामने? कोई बता सकता है क्या चल रहा है?
0: Get ready to find some painful answers hidden in burning questions. Hathras 16 Days, a gruesome case of pain, power and politics from the journalists on field. Streaming on Hindi Z5.
2: Flying to India or Pakistan? Book with Southall Travel. Unbeatable prices guaranteed. Find a cheaper ticket within 24 hours and we'll refund the difference. Call 0208-574-8410. 24 hours a day. Southall Travel. Atoll protected.
3: Looking to get back into study? Choose Global Banking School. We deliver undergraduate and postgraduate courses in accounting, business, construction, computing, project management, healthcare, tourism, and psychology with counseling. Our flexible courses are taught face-to-face at a time to suit you on weekdays and evenings. Courses are delivered across 10 campuses in London, Birmingham, Manchester, and Leeds. Contact Global Banking School on 0208092944 or visit globalbanking.ac.uk to start your learning journey today.
4: ZTV HD पर देखिए गंगा माई की बेटियाँ।
5: शात्रु जी, हम तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए।
4: जो कभी दिल से जुड़े थे, आज मजबूरियों ने उन्हें दूर कर दिया है।
5: समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सिद्धू।
4: क्या सिद्धू और स्नेहा फिर मिल पाएंगे?
6: स्नेहा जी और हमें कोई रंग नहीं कर सकता।
4: देखिए गंगा माई की बेटियाँ रोज शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
0: Your dream Asian wedding deserves a setting as unforgettable as the moment itself. Welcome to Hunton Park Hotel, proudly owned by the Clay Oven, bringing decades of Asian wedding culinary expertise to every celebration. A recently refurbished Grade 2 listed 19th century manor house, set within 22 acres of breathtaking grounds. Enjoy beautiful outdoor ceremonies, our spectacular garden suite for up to 500 guests, or two intimate spaces for 160, with 71 bedrooms, parking for over 300 vehicles and a location just off Junction 19 of the M25. Every detail is effortless. Call 0208-903-8800 or visit huntonparkhotel.co.uk today. Din mein bablu, raat mein lalli. Ye kalakar ban gaya hai sabka kaal. Baap ki maut ka badla lene aa gaya hai bablu. देखिए सतरंगी बदले का खेल स्ट्रीमिंग नाउ ऑन हिंदी Z5. गुड म्यूजिक, ग्रेट फिल्म्स, द क्लासिक्स, गेम चेंजर्स ऑन OTT एंड द बिग स्क्रीन. इफ बॉलीवुड फ्लोट्स योर बोट, कम सेल विद अस. शबनम साही ऑन सनराइज विद सोनी टीवी, वीकडेज फ्रॉम 9 AM.

0: जिस घुंघरू ने बाप की जान ली वही घुंघरू अब बेटे का हथियार बनेगा। सिंह और पांडे परिवार की पुरानी दुश्मनी का फायदा उठाकर बेटा बदला लेगा। बबलू महतो काल बनकर आ गया है। दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए सतरंगी बदले का खेल सिर्फ हिंदी Z5 पर। इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई। My mom started cooking with khanam ki in the 70s. Dal makhani, butter chicken, these have been my family's favorite dishes. Using khanam ghee for 3 generations, the aroma, that creamy melt in your mouth, satisfying taste. Ah, now my kids insist I use this superfood for their eggs and lamb chops.
1: Mom, is the dinner ready? As I can smell the khanam ghee.
0: Khanam Ghee, the legacy lives on.
2: Khanam Ghee, a brand from SOP International. Available at all major supermarkets and your trusted local Asian supermarkets.

0: HD पर देखिए गंगा माई की बेटियाँ।
1: शांतनु जी, हम तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए।
0: जो कभी दिल से जुड़े थे, आज मजबूरियों ने उन्हें दूर कर दिया है।
2: समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सिद्धू।
0: क्या सिद्धू और स्नेहा फिर मिल पाएंगे?
3: स्नेहा जी और हमें कोई रंग नहीं कर सकता।
0: देखिए गंगा माई की बेटियाँ रोज शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
4: Planning the holiday of a lifetime or visiting loved ones? Call Southall Travel 24/7. Fast, reliable and with a price match guarantee. Book now on 0208-574-8410. Southall Travel. Any airline, anywhere, anytime. At all protected.
5: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange. Zara Holly.

0: तेरे दीवार।
1: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th of June।
3: लुकिंग टू बूस्ट योर करियर और जस्ट स्टार्टिंग आउट As the expert in online learning, the Open University has over 200 qualifications to choose from, like business, psychology, computing, and many more. With tutor support and courses that fit around your life, getting those in-demand skills employers are looking for isn't so far away. Search the Open University to find out more. The Open University. The future is open.
4: दिन में बबलू रात में लल्ली, ये कलाकार बन गया है सबका काल। बाप की मौत का बदला लेने आ गया है बबलू। देखिए सतरंगी बदले का खेल, स्ट्रीमिंग नाउ ऑन हिंदी Z5।
5: नो नो, इट्स ओके, डोंट एडजस्ट योर रेडियो। दैट्स द साउंड ऑफ अ कंपनी दैट डिड नॉट एडवर्टाइज ऑन सनराइज रेडियो। नाउ लेट्स हैव अ लिसन टू अ कंपनी दैट डिड। Can you hear the difference? Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station and see the difference for yourself. Call the Sunrise Radio sales team on 020 8574 7777.
6: Sumanyu in Oxford, you got it absolutely right. Well done, Mr. Khan, a very good evening to you. Mandeep, it's not from Rocky Odani Ki Prem Kahani. And Urvi Najwa, I'm going to give you the benefit of the doubt and say yes.
7: Ji haan, bhai bheno, Jhumri Taliya se Munni ki request aayi hai. Rafta rafta dekho, aankh meri ladi hai.
6: Answer coming up after this.

0: Weekdays with Shabnam Sahi.
1: I don't put it past him, do you?
0: Weekends with Amit Channa.
2: The tension rises and the anticipation becomes unbearable.
0: This is Sunrise Radio.
3: दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा